ஸ்ரீ கணேசாய நம. அஸ்மதகுருப்யோ நம. ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நம. விக்னேஸ்வராய பரதாய சுரப்ரியாய லம்போதராய சகலாய சகத்திதாய நாகாநனாய ஸ்ருதியக்ய விபூஷிதாய கௌரீசுதாய கணநாத நமோ நமஸ்தே. ब्रह्मा मुरारी स्थिपरंतकारी भानो शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहः शान्तिकरः

0: रेडियो साइमन 89.8 मेगाहर्ट्ज
1: साहिनो समय सूचक अहिले दिउँसोको एक बज्यो 1 PM

0: बुला रहा था। बढ़ते बढ़ते बच्चियों में
1: फालतू है साला, मुफ्त में सुन रहा है, मत देख उसको। चल छोड़, मैनेजर देख रहा है।

0: 我挖苦你发生的事情，我苦我把你算得很好，你是花花绿科的苦。
1: 我把你看到的不单单是白龙的沙巴龙的木楼，是铁拉斯庄园内高山的那些区域和高山谷，马路上的屋子上的政府部门的特色和表达的派过上。不单单是你的派，不是所有的那些区域和沙巴上的政府部门的政策，而是在一个城市中的不单单是沙巴龙的那些区域来，而是政府部门的政策上的政府部门的政策上的政策上的政策上的政策上的政策上的政策上的政策上的政策上的政策上的政策上的政策上的政策上的政策上的政策上的政策上的政策上的政策上的政策上的政策上的政策मुख्य कार्यकाल बाटो फरार लागू औषध अफिम मुद्दा का कैदी पकड़ परेका छन्। जनजे आंदोलन का क्रम में नखु कारागार बाटो फरार भएका लागू औषध अफिम मुद्दा में 20 वर्ष कैद सजाय भुगतान गरिरहेका प्रतिवादी पकड़ परेका हुन्। पकड़ पर्नेमा मकवानपुर को बकैया गांवपालिका छ ज्यामिरे बस्ने 39 वर्षीय सुकलाल वाइबा रहेका छन्। फरार रहेका उनलाई खोज तलाश का क्रम में मकवानपुर को बकैया गांवपालिका 4 जुरेली बजार बाट पकड़ गरिएको हो। पकड़ परेका वाइबालाई आवश्यक कानूनी कार्यवाही लागि भीमफेदी कारागार पठाइएको छ। हामीसँग खबर असल पनि बाँकी छन्। नेपाली रेडियो नेटवर्क सुन्दै गर्नुहोला।
2: नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडका कर्जा ग्राहकहरूलाई ब्याज छुटसहित कर्जा चुक्ता वा नियमित गर्न आउने बारे अत्यन्त जरूरी सूचना। यस ब्याङ्कबाट कर्जा उपभोग गरी विक्रमसम्म 2079 साल चैत्र मसान्त अगाडि खराब वर्गमा वर्गीकरण भएका बकेलता सावाहरू 1 करोड़सम्मका खराब तथा अपलिखित कर्जा ग्राहकहरूलाई विक्रमसम्म 2083 साल आषाढ मसान्तभित्र योजना अनुसार ब्याज छुट सुविधा सहित कर्जा चुक्ता